सुबमान दारम रायतरंगा का अंदर दवस वल्ट हवनल्ला नति वेनो समहर वेलावट ए वगे जीविते अंदर दवस वल्ट लांग वेना एव गोडाक दनना वेडी अक्का ईट पस्से अपे आलव होयनवा एत अपिट दनुनाट अंतिमट ए आयत यन्न गियोत पाबो